द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो।

जोड़ निज प्रभ मोह सो कहे हों जग माहे जो तेह प्रभ को त्याए हैं अंत सुर्ग को जाहे। दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे जल ते

ना मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक ना जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहियो सब तो हे बखानियो। दोहरा

साध जना कै संग भवजल तारियन साकत नंदक दुष्ट खेन माहे बेदारियन तेस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए।

है सो हमारी रक्षा करे। बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पहाट कीरत की, गुर रामदास राखहु सरनाई। सो काहो टल गुर सेवी, अहन सुसहज सुभाय। दर्शन परसिय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, दूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

साहब राय ने आख्या सिखो वो मेरे घर विच आके मैनू उलामा देन आ गए जे तुहाडी जान बख्शी है साह लै रहे जे जीव रहे जे इन्नी खैर नहीं मनाउंदे घोड़ियां बनन वास्ते रस्से नहीं हां आ तुहाडियां लम्मियां लम्मियां दाड़ियां तुहाडे सिर दे लम्मे लम्मे केस जूड़े तुहाडे इन्हां नूं मुन के ते फिर ये रस्से तैयार होके घोड़ियां बजन गियां केस गुरु दी मोर ने केसां दा जिक्र वार वार गुरबाणी विच आया है केसा का कर चवर टलावा जदों परमात्मा दी नक्शो नुहार दी गल चली ते भगत साहिबान ने कह दिता सोहना नक जिन लंबड़े वाला सानू परमात्मा वर्गा स्वरूप बख्शिश कीता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साढ़े पांच ककार ने ते इन्हां पंजां ककारां विच पहला ककार केस है अरदास करदे जदों सिक्खी दान मंगदे आ ते सिक्खी दान विच पहला दान केस दान मंगिया जांदा है इन्हां केसां दे नां उत्ते श्री आनंदपुर साहिब दी पवित्र धरती उत्ते केसगढ़ साहिब अज भी कायम है जिहड़ा सिक्खां दे तख्त दे नाल दुनिया दे नक्शे अंदर एक वक्री होंद अपनी दर्शा रहा है केसां उत्ते मारू हमला सी ते सिक्खी उत्ते वड्डी सट सी आए ते घोड़ियां दा उलामा देन सी पर इथे जदों केसां दी गल सुनी दुवे भरा गुस्सा पी गए ने इथे कई वार दो कदम पिछा हटना कायरता नहीं हुंदी कमजोरी नहीं हुंदी एक रणनीति हुंदी है कि इस बीमारी दा पक्का इलाज ते हल कीता जावे कुछ नहीं बोले वापस आए हवेली चो बार पर हुण घर नहीं गए इथों चले ने ते पुस्से पिंड बार्डर वाले पासे नूं जदों आपां अमृतसर साहिब तो अटारी बार्डर नूं जावांगे ते जदों अटारी बार्डर तो आपां एक सड़क आउंदी है झबाल वाले पासे नूं जदों उस सड़क नूं आवांगे ते उत्थे एक पिंड आवेगा उस पिंड दा नाम है भुस्से उत्थों दे दो राठ सिंह ने सरदार बघेल सिंह ते सरदार अमर सिंह इह दोवें भरा चले इन्हां दे कोल आए सरदार बघेल सिंह नूं अमर सिंह नूं सारी गल दसी उन्हां आख्या भाई बघेल सिंह उलामा ते घोड़ियां दा देण गए सां पर उसने साडे केसां उत्ते एक सट मारदे साडे केसां दी साडी सिक्खी दी बेपत्ती कीती है करना की चाहीदा सरदार बघेल सिंह ने भरोसा दवाया कहिंदे कोई गल नहीं घर जाओ हां कल नूं तुहाडे खेत साहब राय दीआं घोड़ियां बर्बाद नहीं करनगियां बर्बाद नहीं करनगियां कहिंदे दोवां भरावां ने सलाह कीती जदों नौकरां ने ओह घोड़ियां सरदार माली सिंह ते गुरबख्श सिंह दे खेतां विच छड्डियां ने फसलां विच वाड़ियां ने इन्हां दोवां भरावां ने ओह घोड़ियां अपने कब्जे विच लै लईआं काबू कर लईआं ते ओह घोड़ियां नौकरां कोलों खोह के ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਟਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਘੋੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਘੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਵਟਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਡਲ ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾੜਾ ਵਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਡ ਕਰੀਰ ਮਲੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਲਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ
हाथी ते ऊठ ते बैठा होया बंदा भी अंदर वेख नहीं सकता भी अंदर की हो रहा है। उस वाड़े का एक दरवाजा है, वह दरवाजे नू अंदरों कुंडी लगती है, बाहर कोई कुंडा नहीं उन्नू। वह वाड़ा है भाई तारा सिंह वां दा। भाई तारा सिंह वां एक भजनीक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा संत सिपाही, संता मानो दूता डानो एक कुटवारी मेरी दा धारनी। चेते रखो उन्हें अपने वाड़े अंदर एक वड्डा सारा टोवा पुटिया होया, उस टोए अंदर वड्डे वड्डे रुखां दे मुढ़ जड़े ने उह सारा सियाल बलदे ने, ते 24 घंटे गुरु का लंगर चलदा 24 घंटे। राठ सिंह बागी सिंह जिन्हां ने सरकार दे नाल मत्था लाया, जड़े जंगला बेलिया में रहिंदे ने उन्हां वास्ते माझे दी सब तो वड्डी ठार है भाई तारा सिंह वां दा वाड़ा। उह रात नूं आउंदे ने सारा सियाल मुढ़ बलदे ने, अग सेकदे ने ते गुरु का लंगर पानी छकदे ने, ते दिन चढ़न तो पहला अमृत वेले लो लगन तो पहला पहला वाड़ा छड़ के जंगलां च चले जांदे ने। एक वड्डी ठार है उन्हां खाड़कू सिंघां दी, उन्हां बागी सिंघां दी जिहड़े सिर तली ते टिका के सरकार नाल मत्था ला के रखदे ने। उन्हां ने घोड़िया दी वटत दे पैसे भाई तारा सिंह वां दे डेरे च पाए ने, लंगर विच पाए ने, जिथे पंथ दी चढ़दी कला वास्ते कार्ज कीते जा रहे ने, जिथे गुरु का लंगर 24 घंटे चलदा है, जिथे गुरु के सिंघां दे वास्ते एक वड्डी ठार बना के भाई तारा सिंह वां बैठा है। उस वाड़े अंदर लिया के जमा करवाए, नाल सरदार बघेल सिंह, सरदार अमर सिंह वह भी उस वाड़े विच आ गए ने, सरदार माली सिंह ते गुरबख्श सिंह वह भी उस वाड़े विच आ गए ने, भाई लखमीर सिंह घरियाले वाले ने भी अपना पक्का टिकाणा वह वाड़ा बना लिया है, होर भी सिंह उत्थे रहिंदे ने। पर कहिंदे जदों घोड़ियां निकल गईयां, घोड़ियां कढ़ियां किन्ने ने, खोईयां किन्ने ने, कहिंदे खोजी मंगवाए पैड नप्पी गई, खोजियां ने आखिया भी ये जिहड़ी पैड है ना चोरां दी जिन्हां ने घोड़ियां खोईयां ने वह भाई तारा सिंह वां दे वाड़े तक आ रही है। पता लगा साहब राय नूं घोड़ियां कढ़ियां किन्ना ने, खोईयां किन्ना ने, ते घोड़ियां वेचियां किथे ने, वटत किथे गई है, खोजियां ने खोज कढ दित्ती। तारा सिंह वां दे वाड़े नूं साहब राय नशहरे ढाले वाला अपने कुछ टुकड़ बोच बंदियां दे नाल आ के धमकिया, वाड़े दे बाहर खलोता, उन्हें मुंह विचों जहर उगलदे आख्या ओ तारिया। चेते रखो अमृतधारी सिंह दा अद्धा ना लैणा गुनाह है। जिहड़ा अमृतधारी सिंह है जिहदे नाम दे नाल सिंह शब्द लगदा है, यह सिंह शब्द कोई तखलस बंदे दा दिता होया नहीं है, यह सिंह शब्द दा तखलस सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बख्शिश किया है। एक कौर यह सिंह यह दो शब्द ने हरेक बंदे दे नाम नाल नहीं लगते, अज असी ला रहे हाँ, लेकिन यह उन्हां दे नावां नाल लगते ने जिन्हां ने खंडे बाटे का अमृत छकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत नहीं छकिया, अजे खालसा प्रगट किया है, अजे नाम गुरु गोबिंद राय साहेब है। ते पातशाह ने हाथ बन के पंथ दे सामने बेनती की कि अमृत मैनू छका के मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह सजाओ। भाई दया सिंह ने आख्या पातशाह यह सिंह एदा नहीं सजे, यह सिंह सजन वास्ते अमृत लैण वास्ते सिर दिते ने। कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने सीस अपना कटाए कै, पाशे तुम पहुल दिया पहले हम सीस दिया, हम पहुल देंगे क्या देोगे गनायक है। सिंगन की रीस सीस की है फीस, आओ गली यार की सीस तली पे टकाए कै। मेरे बाजा वाले पातशाह ने सरबंस देने का वादा कर अमृत की दात प्राप्त करके गोबिंद सिंह सजना किया। सिंह ते कौर, कौर तो भाव प्रिंसस राजकुमारियां, एडा वड्डा मान अपनियां धीआं नूं, मर्दां दे नाम नाल सिंघ लगा, धीआं दे नाम नाल कौर शब्द लगा। चेते रखो यह गुरु साहब की बख्शिश है, यह उन्हां उत्ते होवेगी जिहड़े खंडे बाटे दे अमृत दे धारनी बनणगे। इह ते साहब राय बोलिया, जदों उहने एदां दे बोल बाहर कढे, भाई तारा सिंह वां डेरे चों बाहर आया, साहब राय ने आख्या ओ तारिया तेरे वाड़े अंदर मेरे घोड़ियां दे चोर ने। भाई तारा सिंह वां ने आख्या चौधरी जबान संभाल के, ओ वाड़े च चोर केड़े चोरां दी गल करदे तू? कहिंदा मेरे घोड़ियां दे चोर सरदार बघेल सिंह ते अमर सिंह भुसिया वाले। भाई तारा सिंह ने आख्या चोर सिंह ने, ओ चोर तू है,
सीना जोर तू है जेड़ा अपनी घोड़िया के जरिए कृति सिखा दिया फसला बर्बाद कर दे, जेड़ा तेनू किता चोरी नजर आंदा है, खालसे दी निगाह विच एक वड्डा पारोपकार है। पारोपकार कहिंदा चोर मेरे हवाले कर, तारा सिंह ताई धमकाउण लगा साहब राए, बोल दा कबोल बोल मत्ता हंकार दा, दे दे मेरे चोर हथी होवेगा खुवार, नहीं तां छड्डू ना निशान बाकी तेरे घर बार दा। उन्ना चेर पैंदी नी कलेजे ठंड तारा सिंघा, जिन्ना चेर सिख फड़ हथी नी मैं मारदा, ਧੜਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ ਸਿੰਘਾ, ਮਾਰਦਾ ਡਾਕੇ ਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਾਹ ਨੂੰ, ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੀ ਖੁੰਭ ਹੇ ਇੰਜ ਠੱਪੀ।

0: समान गृह साकत शतीह प्रकार ते बिहू समान।
1: साध संगत जी जदों किते हुण समां ऐसा है किसे गुरसिख नूं किसे प्रेमी नूं कह दईए भी बाहरों नहीं छकना चाहीदा, बाहरों छकना रेहड़ियां तों जां नगुरियां कोलों छकना माड़ी गल है, तां साडे ते तर्क कीता जांदा है कि लै इह कहिड़ी गल है, इदां थोड़ी हो सकदा। महाराज जीआं दे इह बचन आप जी जो पढ़ रहे हो, संतन का दाना रूखा, संतन जिहड़े गुरमुख ने उन्हां दा रूखा दाणा सो सर्ब निदान, उह सारे तरीकियां दे खजाना रूप है। गृह साकत छत्तीह प्रकार, जिहड़ा साकत पुरश है परमेश्वर तों टुट्टा होया है, उहदे घर जे छत्ती प्रकार दे भोजन वी होण ते बिखू समान, वह जहर दी न्याई हन। नगुरे दे हथों चीज लै के छकनी जां साध संगत जी जिहड़े तंबाकू बीड़ी इत्यादिक कुरैतीए हन उन्हां दे हथों चीज लै के छक लैणी, वह जहर दी न्याई है। रहत नामियां दे विच वी बचन सतगुरु सच्चे पातशाह जीआं दे आउंदे हन। इह गुरु ग्रंथ साहिब च प्रतख रूप दे विच महाराज जी कहिंदे भाई गुरसिखां दे कोलों लै के छको, गुरसिखी नूं प्रफुल्लित करन वास्ते गुरु काल तों मर्यादा है। ते नाले साध संगत दी जिहड़ा गुरसिखी नहीं है, जिन्हूं अजे गुरसिखी दा पता ही नहीं, उहदे हथ दे विच तंबाकू वाले हथां दे नाल खा लवांगे तां साध संगत दी इथों तक रहतनामिया च बचन आउंदे हन, जे तंबाकू वाले दे हथों पानी दा गलास पी लिया ते शराब दा गलास पी लिया एक बराबर है। सो इस करके साध संगत दी रहत नूं मुख रखना, अपना शकन छकाउण दा संजम रखना, यह साध संगत जी गुरसिखी दा गूढ़ा अंगा चो एक अंग है। गरीब नवाज इत्थे पावन गुरबाणी दे विच वी इह चीज दृढ़ करवा रहे हन। कई कहिंदे जी गुरबाणी च नहीं लिखिया, आ गुरबाणी चो ही आपां पढ़ रहे हां। आप जी दोहरे इस पंक्तियां नूं सरवण करो ते हिरदे च दृढ़ करो, संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान। संतां दा रुखा दाणा वी सारे सारिआं रूप खजानिआं रूप है, सारे खजाने मिल जांदे हन। गृह साकत छत्तीह प्रकार, साकत पुरश दे घर दे विचों छत्ती प्रकार दे पक्के होए भोजन वी ते विखू समान उह जहर दी न्याई हन।
0: भगत जना का लूगरा ओड नगन ना होई।
1: लूगरा पाठ पोला करना ते विश्राम लाउणा, भगत जना का लूगरा ओड नगन ना होई।

आओ अमृत गुण संत बोलते सुन मन पी लावाओ वार आसमह शांत तृप्त होय बिखै जलन बुझावाओ जाब भगत करह संत मंडली।

0: संतनों साथ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

ते उपजय भगत प्रभ अंतर होय सांत नाम जपत गोविंद का बिनसै प्रहम भ्रांत गुरपूरा जिस भेटिया ताकै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाओ सिमरत सिमरत सिमरी।

0: राम चंद की लस्टिका जिन मारिया रोग।
1: गुरपूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलिया संजोग। जिस सिमरत सुख पाए।

साधु संगत जी, इस पावन शब्द की आप जी ने जड़ा प्रारंभ होए हन, मेरे मोहन श्रवनी ए ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए। अज समा ऐसा है साधु संगत जी, जिथे गुरबाणी दे शब्द दे नाल साडे जीवन की प्रारंभता हुंदी, ते गुरबाणी दे शब्द दे नाल ही साडा अंत हुंदा। साडे कार विहार हर एक कार विहार दे प्रथाए हुण तक आप संगतां ने जन्म तो मरण तक अजे गुरबाणी मध भाग तो थोड़ी अगे गई है, सारे कार विहारां दे प्रथाए गुरबाणी दिन तो लैके पहर तो लैके साध संगत दी हर एक साल महीने का उपदेश महाराज जी ने दिता है, पर असी कल्ले कल्ले उस दिते हुए शब्द नू हर थां ते पढ़न दी बजाए गीत नाद सुन के गंदे अश्लील ऐसियां चीजां नू सुनन दे विच आदि हो गए हैं। इत्थों तक कि साध संगत जी गुरु घरां दे विच ये काम चल पिया है कि अश्लील गीतां दीआं धुनां रागी सिंह भी गाई जांदे, संगत भी उहदे ते बड़े झूमदी है। सो साध संगत जी ये बेनती है, गरीब नवाज जीआं ने यह प्रतख वचन कीते हन, पिछे भी एक शब्द ते दास ने बेनती कीती सी कि संगत दे विच कुछ शंके ने ते वह गलत तरीके पाए गए, इत्थे प्रतख ही सचे पातशाह महाराज जीआं ने वचन कीते हन। मेरे मोहन मेरे प्यारे गुरसिखा श्रवणी ए ना सुनाए, अपने कन्ना दे नाल ऐसियां चीजां नू ना सुन ते ना ही किसे नू सुना। की साकत गीत नाद, साकत दे पुरश जेड़े परमेश्वर तो बिना कोई होर गल करन वाले हन, उन्हां दे गीत कोई ऐसे गीत जेड़े तेरे अंदर विभचार नू पैदा करन, कोई ऐसे नाद जेड़े तेरे अंदर विकारां नू प्रबल करन, उन्हां दी धुन गाउणी ए ऐसे जेड़े गीत ने ओ बोलत बोल अजाए, ओ अजाए ओ बेफजूले बोल हन, उन्हां नू कन्ना दे नाल ना सुन ते ना ही बोल। अगे प्रतख रूप च सारे शब्द दे विच महाराज जी उपदेश दे रहे ने, गीत गाउणे सुनने जेड़े अंदर विकारां नू पैदा करन नू बहुत माड़े हन, केवल ते केवल गुरबाणी ही हर कार विहार ते गाउणी पढ़नी सुननी सिख दा कर्म है और सिख नू हुक्म भी है गुरु साहिब जी दा।

अमृत हार रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब।

शुद्ध है जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है। कोट जन्म की तृष्णा निवारी सरूपां दे विच निवरी पाठ वावे दे कन्ने तो बिना लिखिया मिलदा है पर शुद्ध वावे दे नाल कन्ने दे सहत है। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर कै बचन जपे हर जा।

तान तन जोबन चलत गया। राम नाम का भजन ना कीनो, करत विकार निस भोर भया रहाओ। अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया। मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया। महाविकार

0: मुकरन पाठ कस के करना, मुकरन नहीं करना, मुकरन इकट्ठा ही।
1: बाढ़ प्रताप सुनो प्रभ तुमरो, कोट अघा तेरो नाम हरन, हमरो सहाओ सदा सद भूलन, तुमरो बिरद पत।

आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरै हर की जया। बिलावल महला पंजवा बिन भय भगती तरन कैसे करो अनुग्रह पतित उदाहरण राख स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता सुआन जैसे औध बिहावत अधिक मोहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे। सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिस।

0: दुख हरता हर नाम पछानो अजामल गनका जिह सिमरत मुक्त भये जी जानो
1: राम। अजामल पाठ भी पोला करना अजामल नहीं कहना, जिवे अजामल कीता है अजामल भी नहीं कहना अजामल भी नहीं कहना, अजामल पोला ही। अजामल गनका जिह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाउ।
0: गज के त्रास मिटी छिन हो मह जब ही राम बखानो, नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक भजन माहे लपटानो, अचल अमर निर्भय पद पायो जगत जाहे हैरानो, नानक कहत भगत रक्षक हर निकट ताहे तुम मानो, बिलावल महला नावा।
1: अचल चचे ते अदक दा प्रभाव दे के अचल अमर, अमर पाठ करना अमर नहीं करना, ए ना होवे भी अचल ते ऐड़े नू अगेतर लाता ते अमर ते भी अमर कर दिए, नहीं। अचल अमर निर्भय पद पायो जगत जाहे हैरानो, नानक कहत भगत रक्षक हर, रक्षक भी रारे ते अदक दा प्रभाव दे के रक्षक नहीं कहना, रक्षक हर निकट ताहे तुम मानो।

ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਮਝ। ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਬਨ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ? ਸਿਰਫ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਨਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਉਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਧਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 3 ਕਾਰਨ ਟੋਟਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ। ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹਦੀ ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਪੀ ਹੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਵਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ, ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਕੱਲ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੋਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੋਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਛੋਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वक्ता बने, मन स्रोता बने। पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन की सुनन की आदत ही नहीं, कि जब सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे च बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोग पाठ करते हैं, सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहिंदे ने, दोहरा दें, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कबीर कहिंदे ने, गुरु का शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया। मैं मिथ्या नहीं बोलता, कौड़ा नहीं बोलता, फिका नहीं बोलता, व्यर्थ नहीं बोलता, जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनो भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नो भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है। भगत चाहते ने बनी रहे, बनी रहे। बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जड़े कोई अभ्यासी होंगे तो शब्द चोट कर गया होगा, उदा एक अनुभव होंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता तो ना सही, अपनी प्यास बनी रहन दे, अपनी तड़प बनी रहन दे। उदी ए उमंग पैदा हो जाती है, उदी ए तड़प आती है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हर गिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु, हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगों मैं फरियाद करदा रवा, नहीं मिलदा ना मिल, कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जब कभी कोई गहराई नाल अरदास करता है, प्रार्थना करता है, यकीन जानो उसे च भी आनंद है, उसे च भी रस है। इको एक पीड़ा है जेदे च महा रस है। कबीर कहिंदे ने, मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला, भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज कर दें। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहिंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी दो वक्त कुरान की तलावत करता है, पांच वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात को जकात देता है, रमजान के महीने रोजे रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, तोरा मन नादानम के यजदा शनास। श्री मुखवाक पातशाही दसवें, तू खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान की तलावत भी झूठ, तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तू राम नदानम के यजदा शनास, बराम इज्जत ओ का रहा दिल खराश। तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नू खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नू चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़े होया मनुख लोगां दे दिलां नू जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा। तू ते कदम कदम दे उते दिल तोड़े ने, तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नू, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दरदा हने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हैं, मनुख मनदे हैं, जो जबान दे चे वही दिल दे चे, जो दिल दे चे वही जबान दे चे। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे है, ये कच्चे ने। चलाक मनुख बारों कुछ होर आंदा है, अंदरों कुछ होर आंदा है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਏ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉਂ ਲਾਈਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰ। ਉੱਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਵਰਾ ਭੋਲਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਦ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸਤ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਗਊ ਤੂੰ ਗਊ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ। ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਖੋਤਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੰਨ ਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੱਭੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਾਉਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਥ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਚਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਗਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ। ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ। ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਜਦ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਗਲਤ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ।
पहले किवें शुद्ध हो जाएगा, बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जे जी, इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहिंदे ने पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण, ऐसा बाणी दा बाण लगे है पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो ठीक ही कीता होगा, जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, कहिंदा है जिहड़ा मेरा पैर टुट गया है ना, इस टुटे पैर का मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मनदा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई, पैर टुट गया ते टुटे पैर का एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करम, मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइए ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने, पहला बड़ा गहरा स्रोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आ, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जेदा ना सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखदे आ, इक्को दिन एक लाश देखी हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहते हिंदी संवेदना, ऐसे मनुख के अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता है। संवेदना, असी भी देखते हैं बुढ़िया नू, असी भी देखते हैं बीमारा नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदिया नू देखे होवेगा, एको ही दफा देख के चोट लग गई। या तो अपनी अकल इतनी महान होवे मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा संसार तो कोई चोट लग जाए,
बहुत वड्डा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया। बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है। बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत देख भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम गुरु का शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे श्रोता होवे। दूसरा अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा संसार तो कोई दुख बहुत बड़े रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनों इस तरह बयान करा जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं उदास नहीं ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इन शब्द ने चोट की होवे। दूसरा ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं गुस्ताखी माफ कि इन अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा अजे संसार तो भी इसनों कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है निराश हो जाता है। प्रथम सत्संग विच आउंदिया आउंदिया एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। चलो ये संबंधित मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने आवन जान एक खेल बनाया, अज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बीन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। इतने लहर बन रही ने मिट रही ने बन रही ने मिट रही ने, संसार बन रहा है मिट रहा है, मनुख जम रहे ने मर रहे ने, जीव जम रहे ने मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा निराश हो जाएगा अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नज़म थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नू कहिंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया शामी खा लिया फिर सौ गया फिर दूजे दिन फिर वही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं, सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमा ने सिंघासन जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेल दी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेलते हैं। कहिंदे बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नू कहिंदे ने, वड्डा तख्त उनू औरंग कहिंदे ने, ए छोटा तख्त इनू मसनद कहिंदे ने। मसनद गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकों नू ए मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उन्हां नू मसंद कहिंदे आ, फारसी दा लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, यह मसनद है जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। इनू फारसी दे औरंग कहिंदे ने, वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नू जेल दे च पा के ते तीन भरावां नू मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयोदीन सी,
शायद आपनों पता होवे आदिकाल तो कवि लोग गुणी लोग दार्शनिक फिलोसफर राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहते हैं उपनाम, कोई उपमा है गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे है, तखल्लुस रखे है। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन पर बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा, ता ही मुसलमान कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। इत अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधां बाई की कुख तो पैदा हुई सी, ते जोधां बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर की भैन से, ये राजपूत अपने धी भैणा दे डोले मुगलों देन लग पे सन, जिदी अगांह चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधां बाई ए बेगम से अकबर दे, इहदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम। वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे, मेरी मुट्ठी च जहांगीर। इसने गुरु अर्जन देव जी ने शहीद किया, कल गुरपुरब तुसी मनाना है। इसने ही तरह तरह के तसइये टाए, इसने ही बहुत वड्डा जुल्म किया। दोगला से जोधां बाई का लड़का से, अकबर का लड़का से, तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पा के जब सिंघासन पर बैठा है, तखत पर बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। तो शाहजहां का लड़का मुइनुद्दीन जिस दिन सिंघासन पर बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहते ने तखत नूं वड्डा तखत, जेब कहते ने शिंगार नूं। औरंगजेब तखत का शिंगार, तखत की शोभा, तखत की माण मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत जफरनामे राही लिखते ने औरंगजेब नूं, न जेबन तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब। ऐ मुइनुद्दीन ये नाम तेनू शोभा नहीं देता, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त पर बैठता है तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी ब सिद को सफा, न जेब तोरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब।

धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे, नहीं खाऊंदा होवेगा मुसलमान सुवर, पर पराया हक खा रहे तो सुवर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, एक देश दूजे देश का हक मार जाता है, बड़े वड़े वड़े देश जो छोटे देशों का हक खोल लेंदा है, सारी दुनिया च इस तरह चल रहा है, वड़ियां कौमां छोटी कौमां का हक खोल लेंदियां ने, वड़े मनुख छोटे मनुखां का हक खोल लेंदे ने, सुअर खांदे ने या गऊ खांदे ने, और की है अगर इस हिसाब नाल लोगे तो, सुअर खांदे ने गऊ खांदे ने। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुरदार ना खावे, तो मुरदार की है, हिंदू लई गऊ खाना मुसलमान लई सुअर खाना पराया हक मुरदार है, मुरदा है, ये तो मुरदा खाना है। औखे ना होना बौर, गहराई नाल देखोगे वड्डे वड्डे देश छोटे देशां नूं खा रहे ने, मुर्दे खा रहे ने, वड्डियां वड्डियां कौमां छोटियां कौमां दा हक मार जांदियां, वड्डे वड्डे मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जांदे ने। जद किसे दा हक मार लिया तो मुर्दार ही खादा है, और की खादा है, इसे नूं हराम कहंदे ने, ये भी महसूस करदे आ। और महाराज कहंदे ने बड़े ने इतनी वड्डी सियाणप है, खांदे भी हराम ने, अगले नूं कख भी नहीं पता चलता, खांदे भी मुरदार ने, अगले नूं कुछ भी नहीं पता चलता, इतनी दृष्टि ते है, अंधेरे च वेख सकदे ने, रोशनी च नहीं वेख सकदे। तो जो अंधेरे च वेख सकदा है रोशनी च नहीं वेख सकदा, गोगू है और कोई की है, गोगू है। संपत दौल झूल संग झोलत, माया मगन फिरत गोगना। सतगुर ने उस प्रश्नकर्ता नु चुप करा दिता सी, जिसने किया सी महाराज शब्द सारियां दे हिरदियां नु रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है, सूरज सारियां लई बार चानना कर देंदा है, गुरु दा शब्द सारियां दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा। फिर एक करोड़ां सूरजां वर्गा किस तरह होया, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा। घुग्गू थोड़े ने, बहुत ज्यादा नहीं ने, पंछियां पशुआं ओ थोड़े जे ने, जिन्हां रात दी तारीकी दे ते दिखाई देंदा है, दिन दे चानने च नहीं दिखाई देंदा। मनुखी दुनिया च यह घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, झूठ दे रस आउंदा है, सच दे कोई नहीं, गंदे गीतां दे तेरा सांदा है, शब्द दे कोई नहीं, बिखे नाद दे तेरा सांदा है, रब्बी संगीत दे कोई नहीं। इन्हां दा तालमेल रात नाल बैठदा है, दिन नाल नहीं है। तो चूंकि रात नाल ताल बैठदा है, तो इन्हां ने साधन भी उस तरह दे बनाए ने, क्लब ने, थिएटर ने, शराबखाने ने, वैशी हाले ने, जुए खाने ने, सब रात नूं खुलदे ने, इन्हां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, दिन दी नहीं है। लॉस एंजलिस दे च एक सज्जन मैनूं कहण लगा, उत्थे भी किधरे धन गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्मनामा आया सी, ते उस दिन किधरे हुक्मनामे की कथा करनी सी, इतवार का दिन सी, राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तप्पे घना कालिया काले वन। पहले पातशाह जी का वाक है, सूरज दिन चिट्टा चढ़े है, पर कालिया चीजा ते कालियां ने कोई चिट्टियां नहीं हुई, रात काली बोली है, बड़ी भयंकर मसया दी रात, पर चिटियां चीजां ते चिटियां ने कोई कालियां नहीं होईयां।
महाराज कहते हैं करोड़ा भी दुष्ट मिल जान संत अपनी सजनता ही नहीं छड़ता, भावे कितनी मस्या की रात हो जाए कितनी कालक हो जाए उदी चिट्याई रहेगी। राती होवन कालियां सुप्पे दा सेवन, मल्ला पहला सोई मल्ला पहला है, पहले पातशाह जी का वाक। इनू कबीर अपने ढंग नाल इंज बयान करते हैं, संत ना छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़े ओ तो शीतलता न तजंत। इन्हां इलाकों ते चंदन नहीं है, चंदन भारत विच मैसूर स्टेट विच बहुत ज्यादा है, कर्नाटक विच थोड़ा जिहा, तमिलनाडु विच भी है पर ज्यादा कर्नाटक विच है, थोड़ा थोड़ा आंध्रा च भी मिलता है, मध्य भारत विच भी मिलता है, पर अच्छी नस्ल का जिहड़ा चंदन है बावन चंदन ओ कर्नाटक विच है, बड़ा कीमती। अक्सर जद चंदन दे लकड़ की कटाई आती है तो फिर मोर छड़े जांदे ने, क्यों चंदन नू सप लिपटे होंदे ने, कोबरे फनियर नाक। चंदन बड़ा शीतल है, चंदन बहुत ठंडा है, तो सप दे सिर दे जिहड़ी जहर आउंदी है अगर वध जाए सीमा तो फिर खौलदी है, अगर उस नू कोई जानदार चीज जानदार जीव ना मिले हो सकता पत्थर नो भी डंग मालेगा जहर कड़न ले, क्योंकि सिर उसका खोलता है, वह दरख्त नो भी डंग मार सकता है। कुछ तो कहते ने उही पत्थर संखिया बन जाता है जिन्हों फनियर नाग डंग मारदा है, भारत दे ते इस तरह मनते ने वैद लोग उन्हों संखिया कहते ने। ये सप चंदन नू लिपटे होंदे ने, चंदन ठंडा भरा है, उन्हां दे सिर नू ठंड मिलदी है। अक्सर उत्थे मोर छड़दे ने ते मोर सप्पां नू खा जांदा है, मोर सप्पां ते हमला करदा है, ते सप डंग मारन दे च मोर नू सफल नहीं आउंदा क्योंकि उसदे ऐसे पंख ने उन्हूं कोई चोट ते हानि नहीं पहुंचदी। अक्सर सप नसदे ने भजदे ने मोरां नू वेख के। भगत कबीर कहते ने सैकड़े सप लिपटे ने चंदन, क्या चंदन जहरीला हो जाता है कि चंदन कोई गर्म हो जाता है? नहीं, चंदन सुगंध ते ठंड सप्पा नू भी देंदा है। संत ते ओ है जिदी महफिल विच बैठ के कोई चोर भी शांत हो जाए, इतनी मेहरस करते हैं। मैं पढ़ रहा सी सूफी फकीर दी गाथा हसन दी। रात दा वक्त अद्धी रात दा ईरान दी गल, ईरान ठंडा देश बर्फां पैंदियां, चोर किदे हसन दी कुटिया दे च वड़ गए। हसन लेटिया होया सी उपर कंबल, दया आ गई इस चोर नू मेरे घर चो कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाएगा, अद्धी रात नू आया है, ठंड दे विच आया है बेचारा, खाली जाएगा। कदी किसे संत ने चोर नू नहीं मारिया, चोरा ने चोर नू मारिया, बगौर मतला करना। कदी कदी किसे संत ने दुष्ट नू नहीं मारिया, दुष्टा ने ही दुष्ट नू मारिया, कदी बगौर मतला करना। जैसे वो देखदा है चोर दी अखां रात नाल तालमेल बिठा लैंदियां ने, क्योंकि उसकी जिंदगी रात दी है, सहजे सहजे उसनू रात विच दिखाई देण लग पैंदा, अंधेरे विच दिखाई देण लग पैंदा। उन्हें देखे कुछ नहीं है, जान लगया हसन ने आवाज मारी, मित्रा होर ते मेरे कोल कुछ नहीं, मेरे कोल कंबल है, तेरे कोल कंबल भी कोई नहीं, बाहर ठंड बड़ी है, ए ले जा, होर अपने कोल कुछ भी नहीं, ए ले जा।
खाली ना जा, मेरी तोहीन ना कर, मेरी कुटिया चो मेरे घर आंदा ही नहीं कोई, तू आया और अद्धी रात नू आया, खाली जा रहे हैं, मैनू दुख है, मेरा हिरदा तड़पदा, मेरे ते तरस खा, मेरे हिरदे नू तड़पा ना। ऐ जा कंबल, चोर दी सारी चोरी निकल गई। पता है उस चोर ने की आख्या, जिंदगी च पहली दफा किसे अमीर दा घर लभ्या, आया तो मैं लुटन सी, मैं खुद लुटिया गया। चोर फकीर हो गया हसन दी संगत नाल, हालांकि उसनों चोर ते भी तरस आ रहा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते कितनी काली रात हो, चिट्टियां चीजां ते चिट्टियां ही रहिंदियां ने, कोई कालियां थोड़ियां हो जांदियां ना। और कितना ही चिट्टा दिन तपया होवे, चारों पासे उसने रोशनी चिट्टियाई फैलाई होवे, पर कालियां चीजां ते कालियां ही रहिंदियां ना। पंक्ति मैं थानू फिर सुनावा, राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तप्पे घना कालिया कालेवन। कितना भी सूरज चानना करे, कालियां चीजां कालियां ही रहिंदियां ना। कितनी रात कालख वंदे, चिटियां चीजां चिटियां ही रहिंदियां। ये जो कहिंदे ने माहौल ठीक नहीं, की करिए, माहौल जरा ठीक हो जाए फिर असी ठीक हो जावांगे, सब बहाने बाजियां ने। अंधेरी रात विच भी चिटियां चीजां चिटियां रहिंदियां ने। कितना ही माहौल खराब हो, माहौल ते प्रहलाद का भी ठीक नहीं सी, प्यो वैरी है ते जेल विच पाया होया ते चार चार दिन का भुखा, वो जेल विच भी समाधि ला लैंदा, असी घर विच भी नहीं ला सकते। वो चार दिन का भुखा है सुरत शब्द नाल जोड़ लैंदा है, इत्थे भर पेट भी मनुख नहीं जुड़दा है। उत्थे प्यो जान का वैरी है फिर भी वो प्रभु नाल जुड़े होया है, इत्थे मां बाप का लाड मौजूद है, सब कुछ मौजूद है फिर भी प्रभु नाल जुड़ना नहीं है। माहौल ते प्रहलाद का भी ठीक नहीं है, माहौल राम का भी ठीक नहीं है, बनवास है। रात रुखां तले कटना होंदा है, दिन नूं किधरे भोजन नसीब होएगा कि नहीं, कि कंध मूल खा के गुजारा करना होएगा, जिंदगी ते कुछ भी नहीं है, माहौल ते ठीक नहीं है। लेकिन वो जिथे भी ने जंगल देश भी मंगल है, माहौल कृष्ण का भी ठीक नहीं है। राजघराने का लड़का है, पाल दे गुजर पे ने, ग्वाले पे पाल देना। शाही खानदान का लड़का ग्वाले पे पाल देना। ये सब बहाने बाजियां ने, जरा माहौल ठीक हो जाए अमृत भी छक लवांगे, जरा माहौल ठीक हो जाए ए कलगीधर पातशाह सी तेरी रहत बहत भी रख लेंगे, जरा माहौल ठीक हो जाए असी अमृत वेले भी उठांगे, जरा माहौल ठीक हो जाए असी नाम भी जपांगे। सब बहाने बाजियां ने, माहौल कदी ठीक नहीं होंदा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहिंदी है, सारी जिंदगी रहिंदी है कुछ ना कुछ तो होंदा। सागर लहरां तो बिना नहीं आउंदा, जिंदगी समस्यावां तो बिना नहीं आउंदी, कुछ ना कुछ तो समस्या रहेगी। माहौल गुरु नानक दा भी ठीक नहीं, पिता मखट्टू कहिंदा है, ममता दी मारी हुई मां कहिंदी है, इक्को ही पुत्र है मेरा सुदाई है, सुदाई है। बेदी कहिंदे ने पोतना बेताला है, बेदी होंदे होया जनेऊ नहीं पहनदा, बेदी होंदे होया वेदां ते श्रद्धा नहीं रखदा, बेदी होंदे होया वेद नहीं पढ़दा। बेदियां दे घर जन्म, ब्राह्मण भी कहिंदे ने कुराई है, बूतना बेताल है,
बगदाद देश के मुसलमानों ने पत्थर भी मार दिता है। माहौल तो ठीक नहीं है, बाबर ने जेल दे भी पा दिता है। माहौल तो गुरु अर्जन देव जी का भी ठीक नहीं है। वड्डा भिरा पृथ्वी चंद वैरी है, जान दा वैरी है। मसंद उसने सारे बागी कर ले ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा घर घाट लुट लिया, अन्न लुट लिया, धन लुट लिया, बस्तर लुट ले, सारा साजो समान लुट लिया, चारों पासे पैरा बिठा दिता। अमृतसर दे कोई संगता गुरु अर्जन देव जी तक पहुंचन भी ना। हुंदे ने इस तरह दे लोग, गुरु तक कोई ना पहुंचे, और इस तरह दे भी लोग हुंदे ने गुरु साढ़े तक ना पहुंचे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दरबार साहब जद गए ना, मसंदा ने दरवाजे बंद कर दिते। गुरु दा घर गुरु लई बंद। गुरु तेग बहादुर साहब नू अंदर नहीं आन दिता मसंदा ने। पता सतगुर बाहर बैठे, थड़ा साहब गुरुद्वारा अज भी मौजूद है, बाहर बैठ के दरवाजा बंद कर देता, तुसी नहीं जा सकते। जब सच आ जाए ना तो फिर झूठिया नू कौन पूछेगा। तो झूठे नू ये डर होंदा है, सच आवे ही ना, आवे ही ना। करीबन करीबन इस तरह दे लोग इंज कह लो चर्च दे चो मस्जिद दे चो मंदरां च खुदा नू कढ छड़दे हुंदे ने। खुदा तो बिना चर्च दी पूजा करदे ने, भगवान तो बिना मंदरां दे च पूजा चलदी है। बगौर मतला करना ऐसा हुंदा है, क्योंकि भगवान होवे ते फिर शैतान नू कौन पुछेगा, सच होवे ते फिर झूठ नू कौन पुछेगा। इतनी रोशनी हो जाए ते फिर अंधेरे किथे जाणगे। शेख सादी ने ते कहानी लिखी है भई अंधेरा रोंदा पिटदा खुदा कोल चला गया, ते आखण लगा खुदावन ताला एक तू मेरे जान दा वैरी बनाया है, मैनू टिकण ही नहीं देंदा ये सूरज, मेरे पिछे लठ लैके पिया है, ये तू मेरे लिए बनाया है, मैनू टिकण ही नहीं देंदा किधर है, मेरा पक्का दुश्मन, तुसी इसनू रोको, मेरे नाल दुश्मनी ना करे, मैनू टिकण देवे। कहानीकार शेख सादी लिखदा है खुदा ने सूरज नू तलब कीता, आखिया अज अंधेरा मेरे कोल फरियाद लेके आया सी, बड़ा रोया है, बड़ा रोया है, तेरी शिकायत करदा सी, तू उस नाल क्यों वैर कमाना है, तू क्यों उस नाल दुश्मनी करदा है। सूरज ने हाथ जोड़ के आख्या खुदावन ताला मैं ते कदी वेख्या ही नहीं अंधेरे नू, ते जिन्नू मैं वेख्या नहीं उहदे नाल कदी दुश्मनी मेरी, मैं ते जानदा ही नहीं उस नू, मैनू पता ही कोई नहीं, मैनू ते नाम धाम दा ही पता कोई नहीं, हे खुदा मैं क्यों उस नाल दुश्मनी कमावांगा। सच दे होंदिया झूठ रह नहीं सकता, इस वास्ते झूठ दी पूरी कोशिश होंदी है दरवाजे बंद करो, सच नहीं आना चाहिदा। हिरदे दे द्वार बंद करो, सच अंदर नहीं आना चाहिदा। मंदर दे दरबार बंद करो, भगवान नहीं आना चाहिदा। गुरु तेग बहादुर साहब लई दरवाजे बंद कर दिते। इतिहास है सतगुर वापस जान लगे इते अमृतसर दियां मातावां ने रोक लिया, नहीं तो जान लगे सन, उन्होंने नहीं जान दिता। तो पता है कवि संतोख सिंह जी ने की लिखा है, सारे अमृतसरिया लई नहीं ने, मैं अर्ज करें भाई संतोख सिंह जी दे बोल, ए मसंद जो अमृत सरिए त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। ए जो मसंद ने, ए जो पुजारी तबका है, ए जो धार्मिक तबका है, ये तो त्रिशना दे सड़े हुए ने, ये तो अंधेरे दे जीण वाले ने। माइया रब रजाइया, एक कवि संतोख सिंह जी ने लिखे है सतगुरु दे मुखार बिन तो बोल निकले, मातावां ने रोक लिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने नहीं तो मसंदा ने ते बाहर कढ दिता सी।
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਨ ਧਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੈਸੇ ਝੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸ਼ੈ। ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ 10-20 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅੰਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਟਟੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਬਣਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਬੇਸਣ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਵੇ ਦੇ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦੇ ਚ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ, ਅਮਰ ਕਲਾਮ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ 91 ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

प्रेसंग सुख बेहाद, संत न छाड़े संत ही, जे कोटक मिले असंत। माहौल बाहर दा कितना भी खराब क्यों ना होवे, संत अपना मन खराब नहीं करता। इतनी मेहरस करते हैं, छोटिया छोटिया गल्लां दे बहाने बाजे, जरा माहौल ठीक नहीं, ठीक हो जाए अमृत छक लवांगे। तो माहौल ठीक करदिया ही करदिया अपनी जिंदगी लगा बैठेगा, कदी नहीं छक सकेगा। माहौल किसका ठीक होया है? किसी का भी नहीं होया। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों का माहौल ठीक नहीं होया तो तेरा कितों हो जाएगा? सारी जिंदगी जंगो जदल दिच लंघ गई मुहम्मद साहब की, सारी जिंदगी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की संघर्ष दिच लंघ गई। अला यार खां जोगी लिखते ने, आधार ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। ए कलगीधर पाशा, तुसी ते एक रात भी आराम दे नींद नहीं सौ सके। कांटा दिले पुरखों से निकलने न दिया था, तुसी ते हर वक्त संघर्ष दे च रहे, भज दौड़ दे च रहे, कदी इधर कदी उधर अदावतां, बाई धार दे राजियां दी अदावत, वक्त दी हकूमत, औरंगजेब दी अदावत, सोडियां दी अदावत, मसंदां दी अदावत, तीरमल दी अदावत, चारों पासे अदावत ही अदावत। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देखिया सिखी दा दायरा बहुत बढ़ गया, बिहार आसाम महाराष्ट्र गुजरात सब लपेट दे चा गया। तो गुरबाणी दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप बहुते चाहिए ने। धीरमल कोल मंग की थी ताकि इस दे उतारे करवाई गए। बीर जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई ते भाई गुरदास जी ने लिखी, पता धीरमल ने की आख्या, जे वाकई गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो तुसी तो खुद उच्चारण कर लो, मैं नहीं देने। ते जे सूर बीर हो तो मेरे नाल जंग करके वेख लो, जे तुसी सूर बीर हो तो युद्ध करके वेख लो, जंग करके वेख लो। तो जे गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस हो तो खुद उच्चारण कर लो, मैं नहीं देने। दोहां दे जिहड़ा रस्ता चुनना ने चुन लो, मैं किसी कीमत ते भी नहीं देने। युद्ध करना है तो युद्ध करके वेख लो, जंग करके वेख लो। धीरमल कोल भी फौज सी और लड़ाक बिरती उसकी है ही सी, सतगुरु ने मुनासिब नहीं समझिया धीरमल नाल युद्ध करना, वरना बड़े बड़े युद्ध होए ने पर धीरमल नाल युद्ध करना धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुनासिब नहीं समझिया। दमदमा साहब दे बैठे ने मौज दे, कागज मंगवाए, कलम अपने हथों दिती मनी सिंह नो, आखिया सतगुरु दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे स्वरूप तैयार करने ने, सिखी दा दायरा वध गया, बाणी दा पाठ थां थां ते हो गया, गुरबाणी दे स्वरूप दे दर्शन थां थां ते होवन। कहिंदे ने तीन महीने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्चारण कर दे गए, भाई मनी सिंह लिख दे गए। ये पहली भीड़ जो करतारपुर दी अजकल जो रामसर दे च लिखी गई ते करतारपुर दे च मौजूद है धीरमलिया दे कोल, इहदे लिखारी भाई गुरदास जी सन, उच्चारण करता गुरु अर्जन देव जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਬੀੜ ਤੇ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ 'ਚ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਈ ਹੈ। और आप सुन के हैरान होवोगे, कदी मौका मिले तो दर्शन भी कर सकते हो करतारपुर जाके, जिथे जिथे तुसी गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी वेखदे हो ना हुण, इत्थे इत्थे उत्थे पन्ने खाली ने उस भीड़ दे च, करतारपुर की भीड़ दे च वो पत्रे खाली पए ने, वो जगह खाली पई है, दो दो पन्ने एक एक पन्ना खाली पिया, क्योंकि इतनी इतनी बाणी है गुरु तेग बहादुर साहब की, ये पन्ने खाली पए ने। हुण ते बहुत कठिनाई नाल

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकती। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै करदे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन तरकी उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: सात संग अग्न सागर तरह
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरु पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: सात संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप होत उदहार
0: आप त्रैलो कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजे
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
1: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ताकी पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ये फल तिस जान के मुख पने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: मोहित भगत के मन बसराम
1: कोट अपराध साध संग मिटे
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
0: एक नाम मन माही समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच तांकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुख मनी
1: सब

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंगे फेरे जंत विस्माद पौन समाद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद शिव तुस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह।

उडुड़ा वाचा टेपाए देखे लोक शेकर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपन निरंकार सच नाम जागा किया सकल जहान सेव सेवे करम चुड़ाओ पिनी रंजना मंचाओ।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों कुबेदाल जेक होय तो कुबेर ती हुरत होए नान पाहे बारा को रंग ना सोए फैबिज खुमचड़ा ये सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे कुके वगा जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने हैं छड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी चारा मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है।

0: तुबा पूरा तपे का सतगिर तुबा हो कलजुगरा थगन का पूरा गैर तुबा हो।
1: पहला श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त कर नीच सुधाए
0: मोहन दरबार बड़ सगल।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सतिये ये फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी। तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न आखी। वे तग आया पे बते बड़

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म लाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण ता कसम कै मैल पाए सी कसम पावे सो।

0: नानक कूड रहया पर भो।
1: मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ सुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रभा।

अड़सठ तीर्थ जे नावे हैं उतरे है नाही मैण जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन न हो।

पाई। संबत सत्रह सास बण जय अर्ध सास फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रावारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्य

कृपा करे जे अपने ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जन हो, इत संयम दुख

0: ये शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृता है सर्व शब्दं ए शब्दं जे को जाने पे ओ नानक का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
1: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा वस देवसे जे को जाने पे ओ नानक का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभी बदा जल रहे है।

और जितेंद्र सबको बेंद्री हेड चलाएंगा आपे देवड़े आई आपे ही कर्म कराएंगा बटा बटा बट में इतने सिरे से तंदे लाएंगा नदरियों पटी जेक रेसल तना कहो कराएंगा दरमंगन पिकना पाएंगा दरमंगन पिक

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: आपे भांडे साजने आपे पुन दे एक ने दुध समाई है एक चुल्हे रंचड़े एक ने हाल

भयो तत् स्यों तत् मलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सुको होटल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसामंदी

करवाना, पर जन नानक एउ खेल कठन है किन्हो गुरुमुख जाना। अगर कोई निंदा कर रहे है इतनी गन समझ लेना, अपने पिछोकड़ दी निंदा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर कोई मनुख उपमा कर रहे है तो अपने भविष्य दी निंदा कर रहे है, ये कुछ होना चाहता है, वरना यह हो नहीं सकता है कि एक राजनीतिक दी उपमा करे राजनीतिक होना चाहता है, एक बादशाह दी उपमा करे ये बादशाह होना चाहता है, एक फिल्म एक्टर दी उपमा करे ये एक्टर होना चाहता है। मैं ते भारत देश देख के हैरान होना है, एक फिल्म एक्टर किधरे आ जाता है, लखां दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मनो कोई कुछ होना चाहता है, उसी दी परिक्रमा करेगा, उसी दे आले दुआले घूमेगा और की है। मनुख अपने भविष्य दी परिक्रमा करता है, मनुख अपने अतीत दी निंदा करता है, जो पिछे पशु जगत देश ए कर चुके हैं वो जद किधरे किधरे भी इसनों दिखाई देंदा है तो बंडदा है, निंदा करता है। निंदा मनुख अपने अतीत दी करता है, उपमा मनुख अपने भविष्य दी करता है, जो कुछ ए होना चाहता है। और परमात्मा होए बिना इसनों चैन मिलन भी नहीं लगी, ये भी मैरिज करते हैं। और जिस दिन परमात्मा हो जाता है, करता ही प्रगट हो जाता है, कृत सारी मर जाती है, वो ऐलानिया कह देता है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किच हर किया, भयो कबीर कबीर। ना मैं कर सकता, ना मेरे कुल समर्थ है, ना ही ये शरीर मेरा, पता नहीं रब ने के कीता है, कीता रब ने, दुनिया कही जा रही है धन कबीर धन कबीर धन कबीर। ओ पुरुष है जिसका अपना करतापन मिट गया है ते पूर्ण करता प्रगट हो गया, ये ओ कह सकता है। रहीम अपने जमाने का एक बहुत वड्डा दानी सी, लेकिन देन लगया अक्सर इस दियां अखां नीवियां रहिंदियां सन, और चलदिया होया भी अक्सर नीवी अख नाल चलदा सी। दो चार सियाणियां ने किधरे कह दिता, ते सियाणे अक्सर हंकारी होंदे ने, क्योंकि सियाणप दा हंकार होंदा ही है, भई हद हो गई, तू देन वाला है, जब तेरा हाथ उच्चा है तो तेरा सिर उच्चा होना चाहिए, तू सिर नीवा क्यों करदा, अपनी अखियां नीवियां क्यों करदा, नैन नीचे क्यों करना है, तेरा हाथ उच्चा रहता है, तू दानी है, हर एक नु देना है, तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए। तो पता है रहीम की कहना है, साई सबको देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें या ते नीचे नैन। दाता परिपूर्ण परमात्मा है, अज्ञानी लोग रहीम नू दानी कह देंदे, शर्म दा वारा मेरा सिर झुक जांदा, की कर, लोकी कहंदे ने शर्म दा मारा मैं सोचदा धरती फटे ते समावां, दाता ते तू, मैं ते कृत हां, मैं ते निमित हां, करता ते तू है, सब कुछ दा करता। इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है, मैं थोड़ा जिहा होर स्पष्ट करन दी थोड़े सामने कोशिश करा, क्योंकि मूल मंत्र दा ए अखर करता अपने विच इतना कुछ छुपाई बैठा है। हो सकता है अगर वो न्याय शास्त्र दा करता जिस ढंग नाल लिख गया है और उसे ढंग नाल सुनाया जाए विचारिया जाए, बहुत सारे लोग गुस्ताखी माफ समझ दे तल तो जो थले जी रहे ने नास्तिक हो जाणगे, न्याय शास्त्र नो पढ़ के बथेरे नास्तिक हो गए। क्योंकि उसने अपने होंग बिल्कुल एक पासे कर ले, कुछ भी नहीं, ईश्वर तो बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पाप भी होई पुण भी होई, बुरा भी होई भला भी होई, रात भी होई दिन भी होई, जन्म भी होई मृत्यु भी होई, इतनी व्याख्या करदा गया, इतनी व्याख्या करदा गया, आखिर मनुखां दी समझ तो परे हो गई गल। जैसे धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, सहस तो नैन नना नैन है तो

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Radio station 1550 AM Gurwani segment tuhade tak. Swargwasi Sardar Ajit Singh ji baad ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 AM ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1550 ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਤਪ ਦੀ ਦਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਚ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਭਾਈ ਮਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਟਾਂਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਟਾਂਡੇ ਦਰ ਚ ਵੀ ਗੱਡਾ ਖੱਚਰਾਂ ਘੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੂਣ ਤੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਿਆਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਦੂ ਅੱਗੇ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਪਰ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਨੌਕਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵਿਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦਸ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ। ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕਮਾਈ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਤੀਰ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ। ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ ਨਾ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਭਾਈ ਮਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਾਦ ਇਕੱਠੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ ਸੋ ਸੰਯਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਸੇਖ ਹੈ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਵ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰ ਵੇਦ 18 ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਚਾਰ ਕਤੇਬਾਂ ਤੁਰੇਤ ਜੰਬੂਰ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਛਮ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਓ ਯੂਦੀ ਮਤ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਚਲੋ ਇਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ महाराज कहते वेद पुराण चारे वेद अठारह पुराण कतेब कुरान कतेबा अते कुरान जमीन आ धरती ते जमान। वैसे जमान दा लफ्जी अर्थ आकाश भी है। कुछ विद्वाना ने जमान दा अर्थ समा भी किया जमाने नाल, पर जमीन ते जमान शब्द दोनों टुकणगे, अर्थ जमीन ते आकाश होवेगा। इहदा मतलब इस धरती ते इस आकाश दे थले जिन्ने भी धर्म ग्रंथ ने, मान ले तू सारे पढ़ी जा रहा है, वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सबान सबना ने सारिया दे सब ने देखे कोखे जमीन जबान सबान के पेख है सारिया नू चंगी तरह कोख्या। हुण इत्थे भी थोड़ी जी मैं बेनती कर दिया, मन च आवेगा भी पाठ पढ़न की गल तां गुरबाणी भी कहिंदी। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जदों पाठ की गल करदे आ उत्थे नाल विचार की गल करदे आ, जिथे विचार की गल करदे आ उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब आचार की गल करदे। पाठ विचार और आचार। महाराज ने देखो बाणी च सी, मेरा ख्याल इत्थे कथा कीती सी जी, ए पड़ पड़ गड्डी लदियां इत्थे कीती सी जी महाराज दी आसा की वार च। उत्थे महाराज जी ने सारे ग्रंथां दा जिक्र करके इन्नी पढ़ाई कर लै, पर गल फिर भी उत्थे मैं पढ़ लिया पर नाल खौमे दी तह फिर जम गई। मैं तां एडा वड्डा पाठी आं ते कदी पाठ नहीं कीता। पड़ पड़ गड्डी लदियां, पड़ पड़ भरियां साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाईयां, पड़ पड़ गड्डियां खात, पढ़ियां जेते बरस बरस, पढ़ियां जेते मास, पढ़ियां जेती आरजा, पढ़ियां जेते सास। इस गल नूं गुरु गोबिंद सिंह कह रहे नानक लेख है एक गल सिमरन। जे तू ग्रंथ पढ़ रहा है ओदी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। गुरु गोबिंद सिंह कहते सारी धरती दे ग्रंथ तू वेख ला, नानक लेख है एक गल होर खौमै झकना चाख। इहनूं गुरु अर्जुन साहिब कहिंदे आ पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। इह गल नूं गुरु गोबिंद सिंह कह रहे जी। असल च वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है, सारे देखे हुण किताब सारिया ग्रंथ कट्ठे किते हो। महाराज कहिंदे पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे पंच जना सो संग ना छुड़क्यो, अधिक अहंग बुद्ध बांधे प्यारे, इन विद मिल न जाई मैं किए, कर्म अनेका हार पर्यो, स्वामी के द्वार है दीजे बुद्ध विवेका। पुराण पढ़े का क्या गुण, सुनो इस बेनती नु पीर साहब। वेद पढ़े पुराण पढ़े कुरान पढ़े की पर की पला होया। कहन लगे मैं इना कुछ चेते कर लिया। वैसे शब्द किते खुल के अर्थ हुण गुरबाणी दे समझ पै जाए, जेडे आपा भी झगड़िया च पए ना, हालत साडी भी हुई है। कहने इन्हें सारे वेद चेते ने, एदी खोपड़ी च इना कुछ चेता। कहन लगे तेरे ग्रंथा दा ज्ञान इस तरह जिवें खोते दी पिठ उत्ते किसे ने चंदन ला दिता होवे। सुनो चंदन कीमती है, खोते कोल समर्था है भार चुकण दी, पर उहनू इन्नी बेसमझ नू समझ कोई नहीं जिहड़ा मेरे पिठ ते वे कीमती किन्ना कु है। कई वारी धर्म दे ग्रंथ दे शब्द कंठ हो जांदे ने गुरमुखो, उहदी कीमत दी सार नहीं पता हुंदा। वेद पुराण पढ़े क्या का गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। वेदा में नाम उत्तम सो सुना नहीं, फिर ज्यों बेतालिया। नाम नूं तां सुणिया ने बस तुकां कढ कढ के लड़ना शुरू कर दिता। महाराज भाई साहब ने कहा वेद कते भुलाए कै मोहे लालच दुनी शैताने, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने। उस कॉन्सेप्ट च गल कही गई, वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान का पिख है, हर चीज देखिए। पर महाराज अगे बचन कर रहे हैं पौन आहार। पौन आहवा जी, आहार दर्थ आप सारे जाने खुराक भोजन। कई ऐसे ने जेड़े सूक्ष्म हो जाते ने, रोटी नहीं खाते, वह पौन नू आहार बनाते ने। महाराज कहते मैं ये भी देखे जी, पौन आहारी जति जत धार, जेड़े जमांदरू बाल जति जिन्होंने यत नू धारण किया उन्होंने ग्रिस्त नू अपनाया ही नहीं। महाराज कहते पौन आहार जति जत धार, सब है सो विचार, ਸਭਾ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੁਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਮਾਜ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਖਣ ਵਾਲੇ ਜਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਕ ਹਜ਼ਾਰਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਤੀ ਦੇਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਖੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਚ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਖਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੜੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੌਣ ਦਾ ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਤਾਰ ਸਵੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ। ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨਵਾ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੀ, ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਖੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮਾਰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਪਤੀ। ਇੱਥੇ ਭੂਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਰੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਏਕ ਨਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਏਕ ਨਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਯਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ੇਖ ਹੈ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੇਖੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕਪੇਖ ਹੈ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੇਖੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੇ ਦ ਜਤੇ ਜਤਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਦੇਖ ਹੈ ਪਰ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲੇਖੇ ਚ ਕੀ ਪਏਗਾ ਤੇਰੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਵੇ ਜੀ, ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ। ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ, ਅਗਨ ਦਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਅੱਗ ਵੀ ਸਾੜਦਾ ਧੂਨੀਆਂ ਚ। ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ, ਅਗਨ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੈ। ਕਲਪ ਚਿਰਜੀਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੈ, ਅਸਮੇਦ ਜਗ ਕੀਜੈ। ਆ ਜੇ ਇਹ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹ ਜਗ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸਮੇਦ ਜਗ। ਅਸਮੇਦ ਜਗ ਕੀਜੈ, ਸੋਨਾ ਗਰਭਦਾਨ ਕੀਜੈ। ਸੋਨਾ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੇਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਨਾਰਸੀ ਤੀਰ ਤਪ ਕਰੈ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੈ, ਅਸਮੇਦ ਜਾ ਕੀਜੈ, ਸੋਨਾ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ, छोड़ छोड़ रे पखंडी मन, कपट ना कीजे खर का नाम नित नित दीजे। गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदारा नाइये, गोमती साहस गौ दान कीजे। हजारा गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे, ए भी नदी। महाराज कहिंदे ने आत्म जो नरमाइल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तौ न पूजे। अस दान गज दान सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नितो नित कीजे। घोड़िया दा दान कर, गवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर। पर सच्चे पातशाह कहिंदे ने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।
3: मैं एक दफा जींद दे च गौ लै बैठा, खरीद बैठा, बड़ी खूबसूरत सी, चंगी लगी मैनू। हर साल मैं उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ज्योति जोत समान पुरब ते जाना हुंदा। महापुरखां दा डेर है ओ मनांदे ने, संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर। ओ मेरे कोल पुछण लगे, सुनया तुसी गऊ खरीदी है? मैं कहा जींद ते रोहतक ए गऊआं करके मशहूर है, अच्छियां अच्छियां गऊआं। मैं कहा मैनू बड़ी चंगी लगी है, मैं लै लई। ओ आ गए, कहण लगे मैनू दिखाओ। मैं कहा देखो, जींद शहर विच बड़ियां सरावां ने जो गऊआं नाल भरियां रहिंदियां ने। मैं चल के दिखाई, उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया। कहने लगे ज्ञानी जी इनू लेके जा रहे हो? मैं क्यों? ये ठीक लक्षण नहीं ने, औखे होवोगे, दुखी होवोगे। ये सिर्फ दिसण नू खूबसूरत है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थानू लक्षणा का पता नहीं, सानू पता है। जे तुसी गौ लैनी है ते असी थानू लेके देंगे। ओ जिस वपारी कोल मैं लई, जाके संता ने उन्हों डांटिया भी मस्कीन और इन्हू गौ तक डंग दी देनी सी, ये की कीता तू? वो हाथ जोड़ के कहन लगा महाराज जी की करिए, इन्होंने आप ही पसंद की है, इन्होंने आप ही पसंद की थी। वो कहन लगे इन्हों लक्षणा का पता नहीं है। वाकई मैनू गौ दे लक्षणा का पता नहीं सी। कुछ लक्षण ऐसे ने, दिस पैंदा है इराकी घोड़ा है, वधिया घोड़ा है, ये वधिया गऊ है। लक्षण ही दस देंदे ने ये जमीन वधिया है, धरती वधिया है, ऐसे खोजी मौजूद ने। अज ते विज्ञानक ढंग नाल खोज करदे ने, ये धरती बड़ी उपजाऊ है, बहुत वधिया है। लेकिन पुराने जमाने दे सूईए लक्षण देखदे सन। तो मैं अर्ज करा, मनुख धार्मिक है, धार्मिक मनुख दे कुछ लक्षण होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करते। उन्हां लक्षणा तो पता चलता है धार्मिक है, मनुख संत है, भगत है। लक्षणा तो पता चलता है संत है, भगत है। ये लक्षण ते मैं बाद दे बयान करांगा। पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज का पावन पवित्र शब्द, वो कहिंदे ने मैं धर्म दे मार्ग ते चलिया ते हां अपने उत्ते लेंदे ने, मैं उस बच्चे दी तरह चलिया जिसने अज चलना सिखिया, ते जिस बच्चे ने अज ही चलना सिखिया वो कितना क चलेगा? एक कदम दो कदम गिरेगा, गिरेगा, लाजमी गिरेगा। बच्चा लंबा पेंडा तय नहीं कर सकता। जैसे शरीरक तौर ते मनुख बच्चा होवे, ते ओ बच्चा जिसने अज चलना सिखिया कितना क चलेगा? एक कदम दो कदम गिरेगा, गिरेगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सरवन ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु हे गुरु तू मेरी बांह पकड़ मेरी उंगल पकड़ मैं नहीं चल सकता मैं ते गिरदा वाकर दी लोड़ पैंदी छोटे मासूम बच्चे नु चलन वास्ते मां बाप दी उंगल पकड़ के चलना सिखदा है सतगुरु कहिंदे ने हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सिखे तो कितना क चलेगा एक कदम दो कदम गिरेगा धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे चल भी रहे है ते गिर भी रहे है सच बोले है चल पे है झूठ बोले है गिर गए अंदर दया दा वासा होया है चले है अंदर कठोरता दा वासा होया है गिर गए है अंदर दान दी रुचि पैदा हुई है चल पे है अंदर बेईमानी दी रुचि हुई है गिर गए है गिर गए है अंदर नितनेम करण दा चाव पैदा होया है चल पे है पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न दा चाव पैदा हो गया गिर गए है हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहता धार्मिक तरते थे कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहते कुछ भी नहीं चलते ने गिरते ने सत्संग भी कर लेंदे ने कुसंगत भी कर लेंदे ने दान भी कर लेंदे ने बेईमानी भी कर लेंदे ने सच भी बोल लेंदे ने झूठ भी बोल लेंदे ने जीवन भर ऐसा चलता है इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है बुजुर्गी बा अकलस्त नके बा साल तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल बुजुर्गी उम्र करके नहीं है भई ये 70 साल का है 80 साल का है 90 साल का है कहिंदे उम्र करके बुजुर्गी नू ना नापो अकल करके नापो अकल कितनी है समझ कितनी है कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने अकल करके बच्चे ही होंदे ने बच्चियां दी गल करदे बिल्कुल बचपना होंदा है इस तो उल्ट भी हो सकता है कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने अकल करके बुजुर्ग होंदे ने शरीर करके ते 5.5 वर्यां दे ने धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिस दिन गुरुगद्दी ते बैठे ने अकल करके 100 साल देने बुजुर्ग ने महान शरीर करके जो दीवारां दे चिने जा रहे ने मासूम बच्चे ने अकल करके बुजुर्ग ने बुजुर्ग ने इस तो उल्ट भी है शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने मैं कैलीफोर्निया दे कई गुरुद्वारे च देखे 70-80 साल दे बुढ़े 10-11 बजे आ जाते हैं गुरुद्वारे दिन भर ताश खेडते हैं कई गुरुद्वारे च गप्पा मारते हैं निंदा उस्तत करते हैं फिर जो संध्या होने लगती है रहराज साहब का पाठ शुरू होता है कथा कीर्तन का वेला भजते हैं इंज जिमें बिच्छू कटेगा भजते हैं गुरुद्वारे का नाम है कि लिया मैनू कहना पिया एक नू जद जान लगे मैं कह 3 जथियां का कीर्तन है अज एक जथा दरबार साहब तो आया 2 होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने ते मैं कथा भी करनी है रुक जाओ कहिंदे इत्थे हुंदा ही रहिंदा इत्थे होर की होना इत्थे ऐ हुंदा ही रहिंदा तो उत्थे मैनू कहना पिया ये उम्र करके बुजुर्ग ने अकल करके बच्चे ने अकल करके बच्चे गुरु हरकृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने अकल करके बुजुर्ग ने कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने अकल करके बुजुर्ग ने 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है 60 वर्यां दा हरनाकश बच्चा है ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਜਲ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਥਰ ਹਰ ਨਾਕਸ਼, ਜਦ ਤੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਪਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਤ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਹੈ ਰਾਮ ਥਲ ਹੈ ਰਾਮ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜੂ ਸਮਝ ਕੁਝ ਬਿਗੜੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਬਜਲੇ ਨਾਮ ਮੋਰਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਖੇ ਬਾ ਸਾਲ, ਤਵੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ ਨਖੇ ਬਾ ਮਾਲ। ਅਮੀਰੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾ ਪੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸ਼ੌਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾਪੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਹ ਬਸਰਾ ਤੋਂ ਬਗਦਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਠਦੇ ਰਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ। ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 4-5 ਦਰਖਤ ਹੋਵਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉੱਠ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੋਲ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਜੈਸੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਕੂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਨ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਚਚੇਰਾ ਬਿਰਾ ਸੀ, ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਬਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਆਖਿਰ 2 ਕੋਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 4 ਮੀਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ आनंद तू नाल पानी लैंदा हां लैंदा दे करमंडल दे दिता सारे दा सारा एक बूटे च पा दिता। आनंद कहिंदा भगवान सानू प्यास लग सकती है अजे ते रस्ता बहुत रहिंदा है अद्धी वाट तय हुई है सानू भी प्यास लग सकती है तुसी सारा पानी दे दिता। महात्मा बुद्ध ने आख्या सानू प्यास लग सकती है ये प्यास तो मर रहा सी साडे कोल करमंडल पानी होवे आनंद मैं किसे नू प्यास तो मरदा नहीं देख सकता। हां पानी नहीं सी गलवक इसनू पता है विद्वान की कहंदे हुंदे ने सतगुरां ने दसवंध दी मर्यादा बनाई है एक मनुख कोल 10 करोड़ रुपए ने ते एक दे कोल सिर्फ 10 ने एक ने 1 रुपया दसवंध कढ़िया दान कीता है एक ने 1 करोड़ कीता है बराबर ने इस चक्कर च ना पैना जिन्हें करोड़ दान कीता है महान दानी है कख नहीं दानी ओदा 1 रुपया उस करोड़ तो घट नहीं है ओदी कुल संपदा ही 10 रुपए से एक करमंडल पानी दा ही सी ओदे कोल महात्मा बुद्ध कोल होर कुछ भी नहीं सी दे दिता। मोगरे में मनते तनते धन लो सिर है सब ही नहीं को कलगीधर पातशाह कहंदे ने मेरे घर दे तन करके मन करके धन करके जो कुछ भी है सब जगत दा सब खालसे दा अपना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अमीरी माल असबाब तो नहीं है एदे कोल इतनिया महल माड़ियां ने एदा इतना बैंक बैलेंस है एदे कोल इतनी धन संपदा है अमीरी नापी जांदी है दिल तो अगर दिल दे च बिरा वास्ते भी थां कोई नहीं प्यो वास्ते भी थां कोई नहीं मां वास्ते भी थां कोई नहीं तो इनू अमीर आखोगे महाशोम मनुख कुछ भी नहीं गरीब मनुख। लक्षण दस देने स्वभाव दसदा है तर्जे जिंदगी दसती है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया हे प्रभु मेरी उंगल पकड़ मैं नहीं चल सकता मैं तेरे रस्ते ते चलते पिया पर उस बच्चे दी तरह जिन्हें अज चलना सीखे है ते जिस बच्चे ने अज कदम पुटे ने कितने क पुटेगा। गुजरात दे इलाके च मैं देखा है जिस दिन बच्चा पहला कदम पुटे ना ते ओ घर दे शगन मनांदे ने लड्डू वंडदे ने नचदे ने खुशियां मनांदे बच्चे नूं चलना आ गया। फिर जिस दिन बच्चा जबान खोलन लग पैंदा है पहला बोल बोलदा है फिर खुशी मनांदे ने फिर ओ अपना इसनों अपने ढंग नाल मिठाइयां बना के वंडदे ने पड़ोसियां नूं बुला के रिश्तेदारां नूं बुला के साडा बच्चा बोलन लग पिया है ओदी जबान चो बोल निकले है। 4-5 साल का बच्चा हो जाए ते बोले ना मां बाप नू चिंता हो जाती समझ नहीं आती बोलता नहीं पे। 3 साल का बच्चा हो जाए कदम ना पुटे खड़ा ना होवे मां बाप नू चिंता हो जाती पता नहीं गल की है कदम ही नहीं पुटता खड़ा ही नहीं होता। महाराज कहते ने हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते पर उस बच्चे की तरह जिसने अज कदम पुटे है जिदा ध्यान थोड़ा जहा भी शब्द की तरफ गुरु की तरफ चले है समझ लो उसने कदम पुटे है ते जिदा ध्यान ही नहीं चलिया सुरत शब्द का मेले सुरत ध्यान नू कहंदे ने सुरत शब्द की तरफ गई है कि नहीं पाठ कर रहे है सुरत उदे च है कि नहीं सुरत स्रोत नू भी कहंदे ने सुनन नू भी कहंदे ने। सुरत दे 3 अर्थ ने चलो मैं ये भी दोहरा दिया सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना इते सुरत दे च है सुन रहे है ते जे सुरत दे च है ते सुरत आ जाएगी समझ आ जाएगी ते जे सुरत आ गई है ते सुरत जुड़ जाएगी ध्यान जुड़ जाएगा सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना पर पहले तो सुनना है, पढ़ी जा रहे है, पढ़ी जा रहे है, सुनता तो है नहीं पिया, अजे ध्यान नहीं चले, अजे बच्चे की तरह है, जन्म तो इसका हो गया है, चलना कोई नहीं है। देखो तो मैं फिर अर्ज करा, 3 साल हो जान बच्चा चले ना, मां बाप नू चिंता हो जाती है, 50-60 साल हो गए ध्यान शब्द की तरफ चलिया ही नहीं, गुरु नू भी चिंता हो जाती है की हो गया इस क्यों नहीं चलता। मैं अर्ज करा घट लोगों की सुरत शब्द की तरफ चलती है, इस वास्ते पढ़न दे नालों गुरबाणी पढ़न दे नालों सुनना लखां गुणा औखा है, बिना सुरत तो सुन ही नहीं सकेगा, नहीं सुन सकेगा, पर बिना सुरत तो पढ़ सकेगा, भटकी हुई सुरत नाल भटके हुए ध्यान नाल भी पढ़ सकता है। पढ़न वास्ते ध्यान बार करना पैंदा है, नजरां भी बार करनियां पैंदियां, सुनन वास्ते ते शायद अखां भी बंद करनियां पैन, और ध्यान नू अंतरमुखी करेगा ता ही सुन सकेगा, वरना नहीं सुन सकता। ये भी मैं अर्ज करा, एक मनुख उची उची बोल रहा हुंदा है, दूजा सुन रहा हुंदा है, सुनन वाला फिर कह देंदा है, एक दफा फिर आख मैं नहीं सुनिया, तू क्यों नहीं सुनिया, कहिंदा मेरा ध्यान किसे और पासे चला गया, इहदा मतलब ध्यान शब्द दे च नहीं, पाठ कर रहे है ध्यान नहीं है, अजे इहनू चलना नहीं आया, नहीं आया। समाज सुधारक ने, राजनैतिक लोगों ने जो मनुखी समस्यावां दा समाधान पेश कीता, उदे नाल वक्ती तौर ते सिलसिला ठीक, लेकिन मन दियां बेचैनियां दूर नहीं होईयां। हर मुल्क बेचैन है, हर मुल्क परेशान है, हर मुल्क चिंता तो है। समाज सुधारकां ने ते राजनैतिक लोगां ने जो समाधान पेश कीते, इहदे नाल मनुख दी समाधि ते लगी ना, आनंद ते मिलिया ना। अवतारी पुरशां ने जो समाधान पेश कीते, लोगां ने कबूल ना कीता। किहड़े अवतारी पुरश नूं लोगां ने कबूल कीता है? किसे नूं तत्ती तवी ते बिठाया, किसे नूं जेल दे च पाया, किसे दे बंद बंद कटे ने, किसे नूं सूली ते लटकाया, किसे नूं बनवास भेज दिता है? किहड़े अवतारी पुरश नूं वक्त दे लोगां ने कबूल कीता? नहीं कबूल कीता। भगतां नूं भी नहीं कबूल कीता। कबीर दे उत्ते बड़े वड्डे 3 इल्जाम लगे ने, कतल दा इल्जाम लग्या, जेल भी भोगनी पई, चोरी दा इल्जाम लग्या, सिकंदर लोधी ने अंदर पाया, दुराचार दा भी इल्जाम लग्या, केड़ा इल्जाम नहीं लग्या? ईर खालुआ ने सोचिया उंज ते पकड़िया नहीं जाएगा, कोई ऐसी व्यौंत बनाई अंदर ही जाए, एदा बाहर होना ठीक नहीं, हद हो गई। समाज सुधारक ते राजनैतिक मनुख दियां मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश ना कर सके, बनी हुई है समस्या। हर मुल्क दे समाज सुधारक ते राजनीति मौजूद है, पर बेचैनी मौजूद है, परेशानी मौजूद है, चिंता मौजूद है। संत जना ने, भगत जना ने, अवतारा ने जो मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश कीता, वह मनुख ने कबूल नहीं कीता, परवान नहीं कीता। तो समस्या त्यों दी त्यों बनी हुई है, हजारां साल तो बनी हुई है, और रोज रोज मनुखता दे तल ते बेचैनी परेशानी वधदी जा रही है, घटदी नहीं पई। मन दी समस्यावां दा समाधान की है? महाराज कहिंदे ने धर्म। इहदे नाल मन दी समाधि लगेगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, महारस दी प्राप्ति हो जाएगी, महाखेड़े ते खुशी दी प्राप्ति हो जाएगी। धर्म की है? जो निर्मल कर्म ते खड़ा है, ते निर्मल कर्म की है? हर को नाम जप, निर्मल कर्म, बस ऐ निर्मल। कल मैं अर्ज कीती सी, मनुखां दी सारी गति हलचल बोल चाल नाल कायम है, शब्दां दे कायम है। शब्दां दी बड़ी महिमा है, बोलां दी बड़ी महिमा है। दो कौड़े बोल बोले ने अगला सारी रात तड़पदा रह गया। हुण उहनूं कोई आखे ना तैनूं कोई सूआ लगे ना तीर लगे ना गोली लगी है, एवें तड़पी जा रहे। दो बोलां ने तड़पा के रख दिता, दो बचना ने तड़पा के रख दिता, पर दो मिठे बोल तड़प दे दिल नो शांति भी दे सकते। प्रभु दा नाम एक बोल है। बोल नो संस्कृत विच मंत्र कहंदे ने, शब्द कहंदे। शब्द मंत्र बोल वाक इक्को ही गल है। गुरु दा वाक, गुरु दा शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दी आवाज, गुरु दा मंत्र। मैनू चंगी तरह याद है अजे भी पंजाब दे कुछ पिंडा च आवाजा लो गुरु दा वाक नो, हुक्मनामे नो इंज कहिंदे, गुरु दा आवाजा लो। इधर फ्रंटियर लहिंदा पंजाब जो पाकिस्तान दे चला गया, आउणा ते ग्रंथी साहब नू कहिंदे सन गुरु दा बोल सुना दो, हुक्मनामा सुना दो। पंजाबी च बोल कह देंदे ने, वाक कह देंदे ने, संस्कृत दे शब्द कह देंदे ने, मंत्र कह देंदे ने, गुरु मंत्र, गुरु शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दा वाक। उस वाक नूं बार बार जबान दोहरावे ते मन सुने, मन दे चों दुख निकल दे जांदे ने, पाप निकल जे जांदे ने, और एक दिन वो मंत्र सिद्ध हो जांदा है। कहिंदे ने वाक सिद्ध हो गए, मंत्र सिद्ध हो गए, बोल सिद्ध हो गए, शब्द सिद्धि इस नूं मिल गई। तो कल दे बोल मैं थानू दोहरावा। जद बोलण दा मन दे ख्याल आउंदा है, उरना आउंदा है, पवन नाभी नाल टकरांदी, नाभ खुलदी है, नाभी खुलदी है, उत्थों धुन उठदी है, इस वासे नाभी नूं दोनी कहिंदे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁਨ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗਾ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀ, ਅੰਧਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਕਿਤੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੱਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੰਨ ਛੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਨਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, आखिर भोजन ही बच के खून बनता है ते सारे शरीर ही दौड़दा है। भोजन ही बच के मांस बनता है, हड्डियां दी शक्ति बनता है, इंद्रियां दी शक्ति बनता है। जो असी भोजन खांदे हैं उसका लोड़वंद हिस्सा शरीर दे विच रह जांदा है, बाकी खारज हो जांदा है। जो असी वेखदे हां, बोलदे हां, सुनदे हां, जिस नाल मन जुड़ जांदा है ओ ते मन विच रह जांदा है, जिस विच मन जुड़दा नहीं, मन मनदा नहीं, ओ वेख्या होया, सुनिया होया, बोलिया होया अजाई चला जांदा है, खारज हो जांदा है। मैं फिर दोहरा दें, जो असी खांदे हां जो पच जांदा है वो शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति कर देंदा है, उन बन जांदा है, मिंज मास बन जांदा है, बाकी खारज हो जांदा है।